0: नहीं तो है मैं चूसा पारा
1: रोसा तू kanal informasi dan inspirasi. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.